एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स

0: हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, स्वामी विवेकानंद का कथन है, आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेंगे आप श्री रामचरितमानस गान भाग 186। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनुषा जैन की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महिपाल पर।

सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिएगा थैलेसीमिया की बीमारी, डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता अनिता पटेल। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से।

सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से। सखी सहेली ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3 से। शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। शाम 5 से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनाएंगे तराने नए पुराने। और शाम में झरोखा सुनिएगा 6:30 से। शाम 6:35 से संध्या रंजन। 6:45 से संगीत सरिता। शाम 7 से आपको सुनवाएंगे जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा विश्व प्रेमी सम्मेलन। लेखन मदन मोहन खन्ना का, निर्देशन दीनानाथ का। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 से, आपके लिए रात 9 से। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 से। आलेख एवं सर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 186।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: संगीत सरिता में आज से हम आरंभ कर रहे हैं भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आधुनिक जीवन के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब आध्यात्म के शीशे से गुजारा जाता है तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाए भजन सुनकर हमारी सुबह होती है, जिनकी गाई भक्ति रचनाएं सुनकर हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, जिनके भजन के सुरों से हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी श्याम चौरासी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं।
3: नमस्कार।
1: हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद ममता जी।
1: श्रोताओ, जैसा कि श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगन, आज हम इसी भजन से शुरुआत कर रहे हैं। अनूप जी, ऐसी लागी लगन जो भजन है हम सबके मन में है और जबान पे है, जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं।
2: ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है
1: जी।
2: वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया
1: जी।
2: तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी तो उन्होंने, जब मैं खा रहा था खाना, तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं। और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था, और एक पेज पे मेरी नज़र टिक गई और उस पे लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन। इंदिरा देवी का लिखा हुआ ये भजन है और मैं इसको पढ़ता रहा 3-4 बार खाना खाते खाते। और बाद में जब खाना ख़त्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि ज़रा हारमोनियम लाइए और मैंने उनको वो गाना गा के सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई जिस रचना से मुझे सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। और मैं चाहूँगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूँ। हमारे साथ आशीष जी अजय जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ संगत कर रहे हैं।

0: वाह क्या बात है, हम तो भक्ति भाव में बिल्कुल खो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए होंगे हमारे श्रोता भी। अब अनूप जी, हम चाहते हैं कि मीराबाई की एक भक्ति रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा?
1: जरूर, मीराबाई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उसमें प्रेम तो है लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं।

लोगों ने मीराबाई से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मूल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मूल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीद लाते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं और उसका मूल्य क्या है ये बता रही हैं।

0: क्या बात है अनूप जी। वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को ज़रूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं शाम चौरासी आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
1: तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूँगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम चौरासी घराना, जहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए वहाँ रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पे रहे हदियाबाद पंजाब में। उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम चौरासी घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है कि शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है
0: जी।
1: राग तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती हैं, इतनी साफ होती हैं कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम चौरासी घराने की ये जो खूबियाँ हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइट म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाएं आपके भजन और आपकी बातों को, लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अब वक्त हो चला है इजाज़त लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं श्री अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में स्वर्ण सुंदरी फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है आदि नारायण राव ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आज़ाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में दो उस्ताद फिल्म से कमर जलालावादी हैं। गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में बारादरी फिल्म से खुमार बाराबंकवी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के आज के इस अंक के साथ मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जय कृष्णमूर्ति का कथन है, लोगों को ऐसे नजरिए से देखो जैसे वो हैं, न कि उस नजरिए से जैसा कि आपकी सोच के अनुसार उन्हें होना चाहिए। यह था आज का सुविचार।

और अब डालते हैं एक नजर 12 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1459 ईस्वी में आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना हुई थी। 1915 में आज ही के दिन क्रांतिकारी राज बिहारी बोस ने जापानी नौका सानू की मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा था। 1925 में आज ही के दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने थे। सन 2008 में आज ही के दिन चीन के सिचुआन में भूकंप से 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और शतवाजी के दिन सन 2010 में बिहार के चर्चित बथानी टोला नरसंहार मामले में भोजपुर के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने 3 दोषियों को फांसी तथा 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अब डालते हैं एक नज़र 12 मई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1820 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े कुशल लेखक जय कृष्णमूर्ति का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1895 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन का। और 1989 में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का।

श्रोता अब आइए एक नज़र डालते हैं उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन यानी 12 मई को ही हो गया था। उनमें से प्रमुख है, 2015 में निधन हुआ था आज ही के दिन सुचित्रा भट्टाचार्य का। ये बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। हिंदी कवि शमशेर बहादुर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे आज ही के दिन सन 1993 ईस्वी में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले साहित्यकार धनंजय कीर का निधन हुआ था

आज ही के दिन सन 1984 ईस्वी में, और श्रोताओं 1984 ईस्वी में आज ही के दिन निधन हुआ था अलकनंदा का। ये भारत की कथक नृत्यांगना थी। और अवसर की बात करें तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहे हैं। तो श्रोताओं ये था आज का इतिहास, और अब कार्यक्रम में हम आगे नजर डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक भक्ति रचना, और इसे हमने लिया है फिल्म नीलकमल से। स्वर है आशा भोसले का।

राजा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे नीलकमल से ये भक्ति रचना। रचना थी सैरले दुवनवी की और इसे संगीत दिया था रवि ने। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। श्रोताओं, अब आइए एक नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

कक्ष में आयोजित इस मुख्य समारोह का जिला स्तर पर सीधा प्रसारण किया गया। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में इस कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी उदिता सिंह, उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ को लाइव देखा और इसकी कार्यप्रणाली को समझा। हेल्पलाइन नंबर 1100, नागरिक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

डेयरी बाजार से हटाया जाएगा अतिक्रमण। जी हाँ, जाम की समस्या से कराह रहे डेहरी पुरानी बाजार के थाना चौक से अंबेडकर चौक तक की सड़क को एक बार फिर से अनुमंडल प्रशासन खाली कराएगा। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

जमीन रजिस्ट्री कराते समय 13 तरह की जानकारी देनी होगी। जहां रहती जमीन के निबंधन से पहले खरीदारों को उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी जल्द मिलने लगेगी। सरकार के दो महकमों राजस्व एवं भूमि सुधार और मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सभी सीओ को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट भी तैयार की गई है। जमीन रजिस्ट्री कराते समय आवेदकों को निबंधन पोर्टल पर 13 तरह की जानकारी देनी होगी। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

अब बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, नियमितता एवं प्रभावशालिता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर एक ऑनलाइन अनुसरण प्रणाली गूगल फॉर्म विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य विद्यालयों में प्रतिदिन नियत अवधि में संचालित शिक्षण गतिविधियों का डेटा संग्रह एवं विश्लेषण करना है।

प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगी जीविका दीदी। जहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अपनी मेहनत के बदौलत आत्मनिर्भर बनी जीविका दीदियां अब प्राकृतिक आपदा के दौरान आम लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसको लेकर जिला परियोजना विभाग जीविका समूहों से जुड़े सभी दीदियों को विशेष प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर संचालित जीविका समूहों की प्रत्येक सप्ताह होने वाली बैठक के दौरान 15 जून 2026 तक दिया जाएगा।

कैमूर जिला अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षिका को बिना जांच के मातृत्व पितृत्व एवं चिकित्सा अवकाश नहीं मिलेगा। इस बारे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शंभव कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब मौसम पूर्वानुमान। आज वर्षा नहीं होगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता 65% और न्यूनतम 25% रहने की संभावना है। और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम नजर डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो पहले हम सुनवा रहे हैं एक और गाना, और इसे हमने लिया है घायल फिल्म से। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे घायल फिल्म, घायल फिल्म का ये गीत जिसे गाया था आशा भोसले, शब्बीर कुमार और कुमार सानू ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर।

सहयोग पोर्टल के लॉन्च होने पर सभी अखबारों ने प्रमुखता से समाचार छापा है। प्रभात खबर लिखता है, 30 दिनों में नहीं निपटाई गई फाइल तो 31वें दिन सस्पेंड होंगे अफसर।

इसी खबर को दैनिक जागरण लिखता है, आवेदन पर 30 दिनों में आदेश नहीं देने वाले स्वतः 31वें दिन हो जाएंगे निलंबित। और हिंदुस्तान लिखता है, 30 दिन में समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित।

जी 125 दिन मिलेगा काम। दैनिक जागरण ने यह भी समाचार दिया है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में यूपी बिहार से 3 गिरफ्तार।

अब डालते हैं एक नज़र कुछ अन्य समाचारों पर। दैनिक जागरण लिखता है, मनरेगा खत्म 1 जुलाई से जीरा

हिंदुस्तान समाचार पत्र ने आज बिहार में आज आंधी बारिश और मेघ गर्जन का अलर्ट के संबंध में सूचना दिया है। लिखता है, मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में ऑरेंज और दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है। और रुपया सबसे निचले स्तर पर आया, ये खबर भी छापा है हिंदुस्तान समाचार पत्र ने। लिखता है, रुपया सोमवार को 82 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर 95.31 पर आ गया।

और खेल समाचारों में है, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटंस में होगी श्रेष्ठता की जंग। जीत से दोनों टीमों की प्लेऑफ की संभावना होगी मजबूत।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: ये था हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हम रिले करेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों

0: पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत। और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अपनापन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे जहिन तेंदुआ नबीनगर से गिरेंद्र सिंह, सुजीत और टुनटुन। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से भी हमारी ये श्रोता इसी गाने को सुनना चाहते थे प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर काला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। ग्राम नाहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश, दशरथ, विमला।

देवी, मास्टर अनिल रविंद्र और डमरू कलाकार। श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं आप सबकी पसंद पर प्रेम रोग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संतोष आनंद के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गाने को सुनना चाहते हैं फोटानी चौक नारायण एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मेसर मोहल्ला नारायण बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित छोटू और बीके सुरगनैया। कलर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा। आप सब हैं गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आरके सिंह चौहान। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक। और ढोली सकरा से हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार बैरागी। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे इस अंतराल के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। चलिए अब कार्यक्रम में समा रहे हैं आप सबकी पसंद पर कुदरत फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, मजरू के बोल हैं और RD वर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। लचनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। और आप सब हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय।

और अब पसंद आपकी कार्यक्रम के आखिर में हम समा रहे हैं आंखें फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा है शायर ने और संगीत से संवारा है रवि ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं थाना मोड़ गढ़नौखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा। और आप सब हैं नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। सैकटोली समस्तीपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद शाहनवाज परवेज।

0: और इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत।

0: ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत देश के सभी नागरिकों को संसाधनों का संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक संतुलन, ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फल स्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक

0: का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका की शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशी की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू कुमार के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतों की गणना 14 मई को आरा में की जाएगी। ये सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। प्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान 30 जून तक चलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए यह अभियान फिर से शुरू हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर ID बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा के लिए या पंचायत के कृषि समन्वय से संपर्क कर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 47,85,000 से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में इस वर्ष 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम देश में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

0: रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गाँव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
2: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि हुई है। इस अवधि में कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में पहली बार मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इन रिक्तियों में मैथिली भाषा के लिए कोड 25 अंकित किया गया है। निगरानी विभाग ने वैशाली जिले के लालगंज अंचल में तैनात अमीन सुजीत कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अमीन जमीन की मापी और परिमार्जन के लिए रिश्वत ले रहा था। इधर निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले में पुपरी अंचल निरीक्षक कार्यालय के रीडर गोविंद कुमार चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कांड में नाबालिग का नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बक्सर से 2 समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में बक्सर के विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को जमानत दे दी है। मुजफ्फरपुर के बालगृह से 10 बच्चे के फरार होने के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने जिले के नरौली स्थित बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही का उजागर हुआ है। प्रशासन ने बच्चों की जल्द बरामदगी का दावा किया है। राजधानी पटना में 5 जुलाई से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10 का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने कल के ऊर्जा स्टेडियम में इस लीग के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर लीग के ब्रांड एम्बेसडर श्री तिवारी ने कहा कि इसके लिए 31 मई तक खिलाड़ियों का पंजीकरण होगा। वहीं 1 जून से 20 जून तक जिला स्तर पर खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए के मैच में बिहार ने आंध्र प्रदेश को 4-1 से पराजित किया है। इस मैच में बिहार की ओर से कप्तान मोहम्मद नसीम खान ने 2, निखिल कुमार और विजयन कुमार ने 1-1 गोल किया। बिहार का अगला मैच 15 मई को राजस्थान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चिताया, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में एक। अखबार लिखता है, सरकार बोली घबराए नहीं, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है, 30 दिन में

समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित। दैनिक जागरण लिखता है आज जारी हो सकता है सीबीएसई 12वीं का परिणाम। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सीजेआई सूर्यकांत ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम, एक क्लिक पर मिलेगा केस का हाईकोर्ट से निचले कोर्ट तक का डेटा। आज अखबार का शीर्षक है खत्म किया गया निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो का अलग कैडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभवाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
6: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। सुबह 10 बजे से सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले।

सुबह 10:05 पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम होगा आवाज। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड पथाड़ी पंचायत के भैरवा गांव के लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत। सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

पूर्वाह्न 11 बजे से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी और संध्या 6:00 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। इसमें किसान भाई आज सुनेंगे राम नरेश पांडे से ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा मछली पालन की तैयारी। संध्या 6:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल हम रिले करेंगे अपने पटना केंद्र से शाम 7:30 से। शाम 7:50 पर हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम होगा ई मनपसंद। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और रात्रि 9:15 गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 से आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग कार्यक्रम होगा रसरंग और रात्रि 10:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। श्रोताओं गीत मालिका कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं कुछ मौसम अनुकूल गाना। जेठ का महीना चल रहा है तो ये गाना सुनना लाजिमी बनता है, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में कोली नंबर 1 फिल्म का ये गीत। समीर के बोल थे और आनंद मिलिंद का संगीत। गीत मालिका कार्यक्रम का अगला गीत हम जो सुन रहे हैं उसमें धूप को लेकर कुछ सलाह और हिदायतें हैं। श्रोता, हम भी आपको कुछ सलाह देना चाहेंगे, यही कि यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो आप बाहर धूप में ना निकलें। यदि निकलना ही पड़े तो पूरा शरीर ढक कर और खाली पेट ना निकले, भरपूर पानी भी पिए। अब आइए सुनते हैं ये गाना।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गिरफ्तार फिल्म का ये गीत। और इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत से संवारा था बप्पी लहरी ने। श्रोताओं, गोरे मुखड़े पर काला चश्मा तो फपता ही है, लेकिन हमारा इशारा है यदि धूप में निकलना ही पड़े तो धूप का चश्मा जरूर लगाएं, इससे आंखों की सुरक्षा मिलती है। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुहाग फिल्म का गीत। और श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम के आखिरी गीत के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं वादियों में। हालांकि इस गीत में नजारों को चुराने की बात कही गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तपती गर्मी में आपके लिए कुछ ठंडक चुरा लाएं।

इसके साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आकाशवाणी का ये साझा आरंभ केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोकरंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई यानी पकड़ी बाह और की अटखेली हरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

हृदय गति रुक जाने से मुंबई में अभिनेता महिपाल का निधन हो गया। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है।

0: वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़।

दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे शिवसागर प्रखंड के भैरवा गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को पनपने का मौका न मिल पाए। दोस्तों, रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के भैरवा गांव के लोगों से हमने बात की। भैरवा गांव पताड़ी पंचायत में पड़ता है और जीटी रोड और रेलवे के बीच में अवस्थित है। गांव में आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी पक्की सड़क उपलब्ध है। फिर भी हमने गांव के लोगों से बात की और जानना चाहा कि गाँव में, यानी भैरवा गाँव में नाली गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं भैरवा गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के पताड़ी पंचायत के भैरवा गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं।

0: और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैरवा गांव में अभी तक नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। भैरवा गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। भैरवा गांव जो है वो जीटी रोड से करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है और आने जाने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है। फिर भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोगों को इसके बाद भी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाम अपना बता दीजिए।
1: जलिंदर कुशवाहा।
0: गांव का नाम?
1: भैरवा।
0: पंचायत?
1: पताड़ी।
0: सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ गली बनानी अभी बाकी है?
1: हाँ, गली बन गया है, नली भी बन गया है।
0: गली बन चुकी
1: है? हाँ, गली बन गया
0: है
1: सारा।
0: जब आपके यहाँ गली बन चुकी है लगभग सभी, तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं बनने के बाद भी?
1: नहीं, ठीक है। अभी हम लोग का थोड़ा पतला गली है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
0: फोर व्हीलर नहीं आता?
1: ना, फोर व्हीलर नहीं आता है।
0: बाकी कोई दिक्कत नहीं?
1: ना, कोई दिक्कत नहीं।
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
1: हाँ, नाली बनाई गई है।
0: बनाई गई है लगभग सभी गलियों में नाली बनाई
1: गई? जी।
0: जब नाली बन चुकी है आपके यहाँ, तो बनी हुई नाली से घर का पानी निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: नहीं, गली में नहीं जमा रहता है। एक दो जगह नाली फूटा हुआ है तो खेत खाला है तो उसमें तो थोड़ा रिसाव
0: इधर उधर बह
1: रिसाव होता है, हल्का फुल्का, वो भी ठीक है।
0: बिजली रहती है कि नहीं?
1: बिजली ठीक है।
0: बिजली बिल के बारे में बताइए।
1: बिल तो अभी जीरो आ रहा है हम लोग का।
0: 125 यूनिट तो फ्री कर दी गई।
1: हाँ,
0: उसका लाभ मिल रहा है?
1: हाँ, मिल रहा है। तो
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: हाँ,
0: मिल रहा है। सभी को पानी?
1: सभी को।
0: कितनी बार आता है पानी?
1: पानी नहीं, अरे छोटा गांव है तो काम लगता है, जैसे कभी काम लगे दोपहर में भी आता है तो सुबह शाम मतलब हम लोग का पानी आता है।
0: पानी की क्वालिटी?
1: पानी क्वालिटी ठीक है।
0: पीने के काम में आप लोग लेते हैं?
1: हाँ हाँ,
0: पीने का में लेते हैं
1: जी।
0: आपके गांव में कितना वार्ड है?
1: एक वार्ड।
0: आपके गांव में एक वार्ड है
1: जी।
0: पानी की सप्लाई हो रही है
1: जी?
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई सरकारी विद्यालय है कि नहीं आप?
1: जी ना,
0: कोई विद्यालय नहीं
1: जी
0: है।
1: ना, हम आप लोग गृहिंडी जाते हैं।
0: आप लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं?
1: गृहिंडी।
0: गृहिंडी कितनी दूरी पर पड़ता है?
1: गृहिंडी यहाँ से 1 किलोमीटर,
0: लगभग 1 किलोमीटर। आने जाने में कोई परेशानी होती है कि नहीं?
1: आने जाने में बच्चा लोग को परेशानी होता है कि जो रोड है इस पर मतलब जो बाईपास बना हुआ है टूल टैक्स है, तो छोटा वाला गाड़ी इसी गांव में मतलब लेके जा रहा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है बच्चा का। सिंगल रोड है, सब गाड़ी दिन रात इसी में जाता है सब।
0: यही दिक्कत है?
1: यही दिक्कत है।
0: जो गृहिंडी गांव है वो रेलवे ट्रैक के उस पर है कि इसी
1: पर? ना, इधर ही है,
0: इसी पर है
1: जी।
0: अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं?
1: जी ना, इसमें दिक्कत ना है।
0: गृहिंडी गाँव में कितने क्लास तक स्कूल है?
1: बोलिए।
0: 8 तक है जी। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: सीसागर लिखाता है या थनुआ।
0: खेती करते हैं
1: जी?
0: खेती करते हैं
1: जी।
0: कौन कौन सी फसल लगाई जाती है आपके यहाँ?
1: बस यहाँ धान और गेहूँ।
0: सब्जी की खेती होती है कि नहीं?
1: नहीं नहीं, सब्जी खेती मतलब वही जिसका है 1-2 कट्ठा अपना खाने पीने के लगाता।
0: सब्जी खेती नहीं होती है? पटवन कैसे करते हैं आप लोग?
1: पटवन ये नहर से,
0: नहर आती है
1: जी।
0: सभी खेतों में पानी चला जाता है
1: जी।
0: आपके गांव का जो खेत है वो जीटी रोड के उस पार भी पड़ता है या सब इसी पार?
1: जी ना, हम लोग का इसी मौजा में पड़ता है।
0: मतलब जीटी रोड के उस पार नहीं?
1: जी ना।
0: रेलवे लाइन के
1: उस पार भी नहीं?
0: अच्छा, इसी बीच में है?
1: बीच में।
0: तब कोई दिक्कत नहीं होती है? जब आप खेती करते हैं तो बीज की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है, ये सब मिल जाती है आसानी से?
1: हाँ, ये सब जाइए अपना सीसागर या ससराम से धान का बीज या मतलब जो भी लेना है वो सब मिल जाता है
0: आसानी से? मिल जाता
1: है, आसानी से मिल जाता है।
0: अनाज जो पैदा करते हैं आप लोग बेचते भी हैं?
1: हाँ, तो जिसका मतलब जितना खेती है उस हिसाब से बेचता भी है, जिसका कम है तो अपना।
0: आसानी से बिक जाता है
1: जी?
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: जी ना, जो रेट चलता है उस समय वो मिल जाता है।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
1: जी ना।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है?
1: जी।
0: तो आप लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो मरीज को कहाँ ले जाते हैं?
1: सासाराम।
0: सासाराम ले जाना पड़ता है
1: जी।
0: और इसके अलावा और कहीं भी?
1: इसके अलावा छोटा मोटा जैसे बीमारी हुआ तो शिवसागर भी चल जाते हैं।
0: शिवसागर नज़दीक पड़ता है कि सासाराम?
1: लगभग दोनों बराबर ही है।
0: दोनों
1: शिवसागर नज़दीक पड़ता है, सासाराम पड़ जाएगा 6 किलोमीटर और ये 3-3.5 किलोमीटर।
0: आने जाने में कोई परेशानी?
1: जी ना, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सब रोड बढ़िया है। तो
0: और कुछ बताना चाह रहे हैं?
1: बिजली तो अभी सब ठीक है, लेकिन आधा गांव में बदला गया है और आधा गांव में नहीं बदला है
0: तार
1: और खंभा।
0: दोस्तों, अभी आप शिवसागर प्रखंड के भैरवा गांव के लोगों से की गई बातचीत सुन रहे थे। भैरवा गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं हसरत जय।

0: दोस्तों, अभी आप कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गीत सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के भैरवा गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। भैरवा गांव में हम आए हुए हैं और भैरवा गांव के लोग हमारे बीच खड़े हैं। एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
1: कृष्णा सिंह कुशवाहा।
0: गाँव का नाम?
1: भैरवा।
0: पंचायत भी बता दीजिए।
1: पताड़ी पंचायत।
0: पताड़ी पंचायत में पड़ता है ये गांव।
1: शिवसागर ब्लॉक में पड़ता है।
0: आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी भी रह गई है?

0: चुकी है,
1: कोई बाकी नहीं है,
0: कहीं थोड़ा सी भी अथी है जो सकेत गली है, आगा जिल तो चल के बनेगा ही,
1: कुछ बाकी भी है?
0: हाँ, कुछ बाकी नहीं है। अब जैसे घर बन गया उधर साइड में तो उधर बाकी है, उधर नहीं बना है, इधर गांव में हो गया है।
1: जब गली बन चुकी है, पक्की हो चुकी है, तो आने जाने में कोई परेशानी होती है?
0: आने जाने में कोई परेशानी नहीं है,
1: कोई परेशानी नहीं होती है। नाली बनाई गई है गलियों में?
0: जी, नाली बनाई हुई है।
1: बनी हुई नाली से पानी निकल जाता है?
0: हाँ, आराम से निकल जाता है,
1: गली में नहीं जमा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती?
0: कोई दिक्कत नहीं होता है।
1: बिजली रहती है?
0: हाँ, बिजली रहती है।
1: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
0: बिजली का वोल्टेज सही रहता है, इधर
1: ठीक रहता है, समरसेबल चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना।
0: बिजली
1: बिल के बारे में बताइए।
0: बिजली बिल आता है वो तो जो फ्री है,
1: लाभ मिल रहा है?
0: हाँ, लाभ मिल रहा है उसे।
1: नल जल योजना के अंतर्गत जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो आप लोग को मिल रहा है पीने?
0: हाँ,
1: के लिए
0: दोनों टाइम मिलता है पानी, नल जल का
1: आता है,
0: अढ़ाई घंटा सुबह अढ़ाई घंटा शाम को,
1: जरूरत के हिसाब से मिल जाता है?
0: हाँ,
1: पानी
0: जरूरत के समय से मिल जाता है।
1: उस पानी को आप लोग पीने के काम में लेते हैं?
0: हाँ, पीते हैं, हम लोग सब लोग पीते हैं वही पानी,
1: बिल्कुल शुद्ध पानी?
0: शुद्ध पानी है,
1: कोई दिक्कत नहीं?
0: कोई दिक्कत नहीं है।
1: कोई स्कूल है आपके यहाँ?
0: नहीं, स्कूल नहीं है।
1: आंगनबाड़ी केंद्र?
0: आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी चाहिए गांव में, बच्चे लोग को दिक्कत होता है पढ़ने जाने में।
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है?
0: नहीं,
1: स्कूल नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं?
0: किरिंडी जाते हैं लोग विद्यालय में,
1: किरिंडी गाँव में जाते हैं, वो भी आप ही के पंचायत में पढ़ता है?
0: हाँ, पतारी में पढ़ता है।
1: कितनी दूरी पर किरिंडी पढ़ता है?
0: यहाँ से 1 किलोमीटर प्लस है।
1: छोटे बच्चे चले जाते हैं या पहुंचाना पड़ता है?
0: छोटे बच्चे को पहुंचाना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है, रोड पर गाड़ी चलता है तो
1: गाड़ी की वजह से दिक्कत होती है।
0: दिक्कत है ही है गाड़ी की वजह से।
1: उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं कोई आपके यहाँ?
0: नहीं, नहीं है
1: कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है।
0: हम लोग का ब्लॉक में एक शिवसागर है,
1: वहीं जाते हैं आप लोग?
0: वहीं जाते हैं, नहीं तो फिर सदर में जाते हैं सासाराम।
1: अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग?
0: सासाराम जाते हैं हम लोग,
1: सासाराम जाना पड़ता है। खेती होती है आपके यहाँ?
0: जी, खेती होती है।
1: कौन कौन सी फसल लगाई जाती है?
0: गेहूँ होता है, धान होता है।
1: सब्जी की खेती होती है कि नहीं?
0: नहीं, सब्जी वो अपने खाने पर रोपा जाता है, बाकी बेचने के लिए नहीं होता।
1: जो अनाज पैदा आप लोग करते हैं उसको बेचते भी हैं?
0: हाँ, बेचते हैं।
1: आसानी से बिक
0: जाता है? आराम से बिक जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
1: कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: जो बिजली वाला है 11,000 लाइन जो आया है खेत में, हमारे लोग का खेत में खम्बा वम्बा टेढ़ हो गया, कभी तार टाइटे नहीं हुआ है, इसलिए हार्वेस्टर चलता है, दिक्कत होता है, ऊपर ठेक जाता है कभी, फिर मिस्त्री से शटडाउन लगाना पड़ता है,
1: पानी
0: लगने की संभावना बनी रहती है, इसके वजह से थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम चलता है। उसी घड़ी गेहूँ के बाद फसल के बेरी तो धान से कोई दिक्कत नहीं होता है।
1: इसकी शिकायत आप लोग संबंधित कार्यालय में नहीं करते हैं?
0: किया हुआ था, लेकिन बोला लोग कि कर देंगे, लेकिन किए भी नहीं, किया लोग
1: नहीं हो पाया,
0: नहीं हुआ, आया बस दो को पोल सीधा किया, फिर वही हाल हो गया,
1: पूरा समस्या का समाधान नहीं हो पाया,
0: पूरा समाधान नहीं हो पाया।
1: भैरवा गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं और आइए एक महिला हमारे बीच है, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने गांव के बारे में क्या बताना चाह रही हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: बिंदा देवी।
1: गांव का नाम?
2: भैरवा।
1: पताड़ी पंचायत में पड़ता है?
2: हाँ,
1: पताड़ी पंचायत में पड़ता है ये गांव। आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ बाकी भी है?
2: बन गया है, कुछ बाकी है।
1: कुछ बाकी भी है?
2: हाँ।
1: जो बन चुकी है गली उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
2: ना, उसमें परेशानी नहीं है।
1: और जो नहीं बनी है उसके बारे में बताइए।
2: उसमें तो परेशानी होबे न करी, आने जाने में, बन जाता अच्छा रहता।
1: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
2: हाँ,
1: बनाई गई है नाली।
2: हाँ, नाली बन गया।
1: बनी हुई नाली से पानी निकल जाता है?
2: हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कोई दिक्कत नहीं है। बिजली रहती है?
2: हाँ, बिजली तो रहती ही है।
1: बिजली रहती है?
2: हाँ।
1: बिजली की बिल कैसी आती है?
2: कोई दिक्कत नहीं है बिजली से।
1: नल जल योजना के अंतर्गत पीने के लिए पानी मिल रहा है आप लोगों को?
2: हाँ, पीने के पानी आता है, उसीलिए हम खाना भी बनाते हैं, पीती हूँ है।
1: कितनी बार पानी आता है?
2: 9 बजे से आता है तो 10 बजे, 10:30 बजे का तक रहता है।
1: शाम में भी आता है पानी?
2: हाँ, शाम भी आता है।
1: आपके यहाँ स्कूल है कोई?
2: ना, स्कूल है किरिंडी में, हम के लोग आंगनबाड़ी चाहिए बनाने के लिए।
1: आपके गाँव में कोई स्कूल नहीं है?
2: ना, कोई स्कूल नहीं।
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है?
2: ना।
1: तो छोटे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं?
2: उजगे किरिंडी में विद्यालय में।
1: किरिंडी में जाना पड़ता है लेकर?
2: हाँ, हाँ। छोटा लड़का के आंगनबाड़ी बन जाता तो ठीक न रहता उजगी।
1: तो छोटा बच्चा कहाँ जाता है?
2: नहीं जाता है, घर रहता है।
1: घर ही पर पढ़ाते हैं आप लोग?
2: हाँ, हम लोग पढ़ाते हैं घर पर।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के पताड़ी पंचायत के भैरवा गाँव के लोगों से की गई बातचीत। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक और आवाज़ें हैं दोस्तों सोनू निगम और

दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज़ अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज, कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम द्वारा प्रसारित किया गया।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। आरंभ में लीजिए सुनिए भरत शर्मा ब्यास के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

भरत शर्मा व्यास के स्वर में आप सुन रहे थे ये श्रृंगार गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुन रहे हैं मुन्ना सिंह के स्वर में देवी गीत।

मुन्ना सिंह के गाए इस देवी गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार में भोजपुरी एल्बम गीत।

आलोक कुमार और जीतू तिवारी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे अशोक कुमार दीप और मोतीलाल मंजुल की रचना। श्रोता आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं रसधार कार्यक्रम में एल्बम से भोजपुरी गीत। अब लीजिए सुनिए धनंजय धड़कन और शिल्पी राज की आवाज़ों में राहुल रसी की रचना काला टीका।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: आलोक रंजन और ज्योति तिवारी की आवाजों में आप सुन रहे थे अशोक कुमार दीप की रचना। एल्बम था बहागिल अंखिया और इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: विविध भारती से।

0: रंग तरंग
1: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहाँ भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर

नुमाइश एल्बम से पंकज उधास की आवाज़ में आपने सुनी ये गज़ल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मोइत्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज़, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

जान मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिसके लिए मैं सांस

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था। सोनू निगम की आवाज़ जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाज़ों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने

के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था। बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं

पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ की ओर।

विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतज़ार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतज़ार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज़ की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

मस्ती में चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थीं। और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: क्योंकि उनको प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म का नाम दो दुनी चार।

0: के नाम।
1: तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं। और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चाँद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छांव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम, रात, आसमान।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे ज़मीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली ज़मीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से ज़िंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है, सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूँ मैं, और शाम ये दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुँच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और ज़माना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास ज़रूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों।

एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास. लिखते हैं इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं. टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह. तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है. शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है. टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है. सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है. ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है. संगीत में सफ़र का इंतज़ार रहेगा. तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है.

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफ़ी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये ज़बरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतज़ार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचा कर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत

बधाई मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है। ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई, मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वे इस सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पैगाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज़ अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। ज़रा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाज़ें थीं सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन हैं, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद

से काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएँ तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएँ तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफ़र में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी, पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था, और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है, और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था, और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा ज़मीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफ़र तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने।

रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते, लेकिन हाँ अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हमारे एक साथी ने लिखा है, गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था, बेहतरीन उपहार, और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं, मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए ज़रा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नज़र रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी तथा जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता विश्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता विश्व शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे।

0: और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून के आगमन की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इस बीच विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 3 मई को मुनक़दा नीट UG इम्तहान मनसूख करने का फैसला किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह फैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तहान निज़ाम पर भरोसे को बरकरार रखने के पेश नज़र लिया गया है। NTA ने बताया है कि हुकूमत ने पेपर लीक होने के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात के लिए मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के सपुर्द करने का फैसला किया है। एजेंसी का कहना है कि वो CBI के साथ मुकम्मल तआवुन करेगी और तहकीकात के लिए ज़रूरी तमाम मवाद, रिकॉर्ड और मदद फराहम करेगी। NTA ने मजीद कहा है कि इम्तहान के लिए नई तारीख का ऐलान अलग से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और मई के लिए मुंतखब करदा इम्तहान मराकज़ तब्दील नहीं होंगे और दोबारा इम्तहान में वही इस्तेमाल किए जाएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोबारा इम्तहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई इजाफी इम्तहान फीस भी नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी बार असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में मुनक़दा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ 4 दीगर अरकान असम्बली ने भी बतौर वजीर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत BJP की हुकूमत वाली दीगर रियासतों के वज़ीर आला भी तकरीब में मौजूद थे। बिहार कानून साज काउंसिल के भोजपुर बक्सर मकामी अथॉरिटी के ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए दोनों अजला में 25 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 14 भोजपुर में और 11 बक्सर में वाक़ हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में 6,000 से ज़ायद वोटर्स 6 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। वोटों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। आज आलमी यौम नर्स है। ये दिन जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल। ये दिन मरीजों की देखभाल, समाजी सेहत और मुआशी तरक्की में नर्सों के अहम किरदार के एतराफ़ और उनके एहतराम की अलामत है। इस मौके पर वजीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद JP नड्डा ने नर्सों को मुल्क के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी और उम्मीद का सुतून करार दिया। नर्स डे के मौके पर राजधानी पटना समेत रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा बागी कुमार वर्मा का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 77 बरस थी। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। उनके इंतकाल पर वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, असम्बली स्पीकर प्रेम कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मारूफ ज़रई साइंसदान और पद्मश्री एवार्ड याफ्ता गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता चंद दिनों से बीमार थे और उनका पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के बाशिंदा थे और उन्होंने लीची को फ़रोग देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनकी मौत पर समाज के मुआज़्ज़िज़ लोगों ने

0: गहरे सदमे का इजहार किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून की आमद के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक जनूबी बंगाल के खलीजी हिस्से में मानसून दस्तक दे सकता है। इसी दौरान महकमा का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की वार्निंग भी जारी की गई है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। नोट करें पता www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSC अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc। कृपया पुनः सुन लें www.bpssc.bihar.gov.in। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.crpf.gov.in। पता एक बार फिर से बता रहे हैं www.crpf.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप

0: लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से

0: एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

0: आशिकन आवाशिकन।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है, है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और ख़ास तौर पे हमारी सखियाँ सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं,
0: हाँ,
1: और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे,
1: हाँ,
0: कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियाँ आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ,
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा ज़रूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें, मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे

0: अवरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे,
1: सही
0: ऐसे
1: बात
0: शब्द
1: है,
0: होते हैं।
1: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
0: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
1: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में,
0: जी
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में।
0: जी
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिसेज में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
0: और
1: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
0: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं। घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीज़ें बना रही
1: जी
0: हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में,
1: जी
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है।
1: जी आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना
1: और वो लेट जाए बस। हाँ, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था, और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में

0: काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज़ दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियाँ लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये ख़ास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं, बीमारी में उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा।

0: इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना।

0: क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज़ का कोई जोर नहीं चलता है कि
2: बिल्कुल और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
2: क्या बात है।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जाँच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहाँ से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीज़ें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
2: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़की

0: में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
1: और वो ऐसा मानती हैं कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी

बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं, जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने

0: लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमज़ोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: एक और संदेश है, 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की, यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के

0: ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और सौ सौ अनार की एक लोहार की, ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददीहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चे और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
1: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
0: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब
1: हाँ
0: उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो
1: हाँ
0: ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर
1: हाँ
0: उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
1: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियाँ उनकी 4-4 दिन 5-5 दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी,
0: वो
1: और
0: जो
1: महिलाओं को
0: पुरानी
1: मदद भी
0: छुरी जो
1: मिलेगी।
0: होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज़ धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए,
1: जी
0: आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये
1: जी
0: आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब
1: जी
0: बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
1: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
0: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे उसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
1: जी
0: खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों को, जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते
1: जी
0: हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते
1: हाँ
0: हैं। उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो बड़े, वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा हो
1: इसी
0: रहा है।
1: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे, तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है।

0: जी
1: और क्रिएटिव है
0: जी,
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
0: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें।
1: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखें, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और

0: शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे, और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी, और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको, और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा, और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे,
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए, और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
3: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
3: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट्स होते हैं, तो सब

0: लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह,
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
0: थे जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो
1: जी,
0: हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: होता
0: जी
1: है, हेलो
0: और उस
1: फरमाइश।
0: वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले लो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी ले छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी,
1: गुरुदत्त और
0: गुरुदत्त जी
1: जी।
0: की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो
0: जी
1: प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कू पै आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जो कर रहे हैं
1: जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं, हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू